Nama tribunali tanu, vidite sakale sam sam. Kaušik, suno, banda je mal, kutila kala, vasa niđa kula gala. Tuma hata kahu jo čaha uvara, kahita taap bal rošu hamara. Sur samad kada ni kada hi, kahina janab hi aap. Nitya man rana paayani, kaya na kada hi pralaap. Suti katu bachan uthar suhar, ha पर छोह सूद दूद मुख करी अन को जो लरी का कछु अनचित करही गुरु पितु मा तुमो तुमन भरही बंधु का है सब सम्मत तोरे तू चल विनय करसी करू जोरे करी परी तोष मोर संग राम नाहित छार कहा उबराम राम मात्र लगु नाम हमार परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल परसु